तो हर चाहत बुझो सारी तू बुझो काली बन जा गोली मोर मन के सजन तोहर पॉइंट कतल तोहर कपर कतल तोहर माया तोहर छाया मार मन भर लहाय तोहर कहे सब स्टाइल कतल

तो हर चाहत बुझो साली तू बुझो काली बन जा गोली मोर मन के सजन तोहर पॉइंट कतल तोहर कपड़ा कतल तोहर माया तोहर छाया मार मन भर लहा तोहार कहे सब स्टाइल कतल।